आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 7 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू। आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 7 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

देखो हाँ मायके नहीं तू मत मायके मायके मत जाइयो

किधर है रे तू?

जी घास में डाल को फूंक डालो ना, नीचे से माचिस की कांडी लो क्या, अपने हाथ में खाना बनाओ मुझे खिलाओ ना। अरे मेरी रानी, अरे चुनी।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 8 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to रेडियो गाना and it's 9 AM in India. Keep listening to रेडियो गाना. Thank you.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 10 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: सच है बिल्कुल।
1: तू है बुलबुल।
0: सच है बिल्कुल। यू आर वंडरफुल।
1: लग जा गले ए, लग जा गले, दुनिया चले छम छम छम छम छ छम छ छम। ए गर्ल हम तुम पे दिल निसार करता है, रोज रोज रोज ही तुम

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 11 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

मजनू, शिरी और फरहा, इनका सच्चा इश्क जमाने को अब तक है यार।

यही है साहिबान कहानी प्यार की। किसी ने जान ली, किसी ने जान

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 noon in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: हाँ तो नैनों में
1: बिंदिया है,
0: माथे पे
1: बिंदिया है,
0: तो बालों में
1: गजरा है,
0: आँखों में
1: गजरा है।
0: ओहो, फिर

0: रोजी, ए रोजी, रोजी पहले क्रिसमस में तो सबसे पहले आ जाया करती थी, मगर कुछ दिनों से लगता है तुझे कुछ हो गया है। कहीं किसी से लव वव तो नहीं हो गया?
1: क्या?
0: ओफो, लव यानी प्यार, मोहब्बत।
2: वो होने से क्या होता है?
0: जब मुझे हुआ था तो
1: तो
0: मुझे नींद नहीं आती थी,
2: मुझे भी नहीं आती,
0: मुझे भूख नहीं लगती थी,
2: मुझे तो प्यास भी नहीं लगती।
0: दिल में दर्द होता था।
2: दर्द तो मुझे भी रहता है।
0: बस, यानी कि तू गई काम से।
2: क्या?
0: ओफो, यानी कि तुझे प्यार का रोग लग गया है, और इस रोग की बस एक ही दवा है,
2: वो क्या?
0: वो ये कि जिससे प्यार हुआ है अगर वो दिल पे हाथ रख दे तो दर्द मिट जाएगा। मारिया, रोजी, ए रोजी, ओ गॉड,
3: क्या हुआ यो-यो?
0: देखो ना क्या हो गया है अपनी रोजी को।
3: ये रोजी तो हर रोज कोई ना कोई नाटक करती है।
0: नहीं, ये नाटक नहीं है, ये तो बेचारी सचमुच बेहोश हो गई है। कोई दवा दारू करो ना इस बेचारी का।
3: ये जो दौरा है ना, ये मिर्गी का है और इसका इलाज सिर्फ जूता सूंघा। देखा, जूते का नाम लिया और दौरा गायब।
1: बाय गॉड, आज क्रिसमस का दिन है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये दौरा मिर्गी का नहीं है।
3: हे यो-यो, तूने बुलाया और मैं चला आया। यारों का टाइम मत बर्बाद कर, सच सच बोल, तुझे कष्ट क्या है?
4: मुझे दर्द रहता है, दिल में दर्द रहता है,
5: अच्छा,
4: मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती।
5: बाप रे।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to रेडियो गाना and it's 1 PM in India. Keep listening to रेडियो गाना. Thank you.

0: चतुर एक पेर है ना, या घोड़ा बोला या चतुर बोला। गा
1: एक चतुर नार करके सिंगार,
2: एक चतुर नार बड़ी होशियार,
1: मेरे मन के द्वार ये घुसत जात,
2: अपने ही जाल में फंसत जात,
1: हम मरत जात।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 2 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: पवन करे शोर।
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: देना।
1: हे हे हे, अरे हे सूरदास का औलाद, तो अगर सुनाई नहीं पड़ा था हम कहा कहते, हम कहा ठहरा करने को कहा गया गया।
2: हम ये बकवास सुनने नहीं आए हैं, हम यहाँ के राजा हैं और अब हम लौट कर आए हैं, हम राजा की तरह रहेंगे।
1: अरे हाई देखो इकालिया गैंडा के, राजा की तरह रहेंगे यानी अब हम तो हर प्रजा की तरह रहिए।
0: गोविंदा,
1: अरे गोविंदा नहीं जी, हवलदार बोलिए आप।
0: हवलदार साहब, लगता है दो डंडे देने ही पड़ेंगे।
1: हाँ ऐसा कहा,
3: दे दीजिए।
1: अरे रजवा का औलाद, इन्हें आओ रे, पुलिस का भाका नहीं समझता है क्या रे? हम पुलिस वालन का हंसना मना है, चलिए। अरे बगुआ
0: गोविंदा,
1: और हम तो के हुकुम देते हैं ई दारू का अड्डा बंद कर दे।
3: मगर दारोगा जी, हम दिन भर तो हर ड्यूटी बजाई, मगर रात को ये धंधा
1: बंद करो। बंद, हम कह दिया सो कह दिया। अरे दिन का बात नहीं है, रात का बात नहीं है, शराब पीना बुरी बात है तो शराब बंद का
0: बंद। लेकिन गोविंदा, नहीं नहीं नहीं हवलदार, नहीं नहीं नहीं दरोगा साहब, कल तो शिवरात्रि का दिन है।
1: अरे शिवरात्रि के दिन का बात हम कहाँ कहते हैं, अरे कल तो छुट्टी का दिन होते है, भांग पिया जाते, का पिया जाते।
4: जो चिराग हमने जलाए वही चिराग हमारा घर जलाने की कोशिश कर रहे हैं।
5: इससे पहले कि चिराग एक भड़कती आग बन जाए, उसे बुझा देना ही शुभ देती है।
4: जरा हम भी तो देखें उनकी लौ में कितनी गर्मी है।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

दोस्तों, आज इस महफिल में कई मस्ताने हैं, एक शम्मा दो परवाने, एक हसीना और दो दीवाने हैं, लेकिन एक है हीरो और एक है जीरो। अब आप ही बताइए, कौन है हीरो और कौन

आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार ऑफ द वीक शो आरजी अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार अंतरा मस्ती में सुनिए दिए गए अंतरे पर आधारित गाने। लाइव शो में पार्टिसिपेट कीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर से, जो है 91-35-84-12-32 यानी 9135841232। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

हाय हेलो नमस्ते नमस्कार सत श्री अकाल राधे राधे अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। रेडियो हॉटस्टार के दीवाने दीवाने आज स्टार ऑफ द वीक के मेहमान हैं, जैसे कि आप जानते हैं, अलीशा चिनॉय और सुनिधि चौहान। वैसे मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप भी जहाँ भी होंगे मुस्कुराते हुए और ये आज का संगीत का सफर सुन रहे होंगे, ये अपना रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। दोस्तों, कुछ ऐसी आवाज़ होती है जिनको सुनते ही एकदम हमारे कदम थिरकने लगते हैं। कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनके जो धुन होते हैं वो दिलों में उतर जाते हैं, और कुछ सितारे ऐसे होते हैं जिनका अंदाज ही सबसे अलग होता है। वैसे भी आज की जो शाम कुछ ऐसी होने वाली, क्योंकि आज हमारे खास स्टार ऑफ द वीक में याद करेंगे दो ऐसी गायिकाओं को जिन्होंने अपनी आवाज़, अपने अंदाज और अपने शानदार गानों से संगीत की दुनिया में एक अलग पहचान बनाई है। एक ऐसी आवाज जिसने 90s में पॉप अप म्यूजिक को एक नया रंग दिया और जिसके गाने स्टाइल, मस्ती और एक अलग ही जादू, क्या ही कहें, मतलब जितनी तारीफ है उतनी कम है। दूसरी आवाज है जिनकी गायकी में जबरदस्त एनर्जी, दमदार अंदाज और हर तरह के गाने को अपना बना लेने का हुनर। जी हाँ, तो जैसा कि मैंने कहा था कि आज के दो मेहमान हैं अलीशा चिनॉय और सुनिधि चौहान। अलीशा चिनॉय मेड इन इंडिया से लेकर ये कजरारे में उनकी आवाज के जादू तो, और सुनिधि चौहान के धूम मचाले से और यानी कि शीला की जवानी और कमली जैसे धमाकेदार गाने आज की शाम को यादगार बनाने वाले हैं। और तो बिल्कुल आप तैयार हो जाइए, लेकिन सबसे पहले मेरे पसंद के गाने को इंजॉय कीजिए और आते हैं इस गाने के बाद आप सभी का वेलकम करने।

हे शोना हे शोना, बस क्या गाना है सच में दिल को छूने वाला ये डिमांड, मतलब सॉरी मेरी पसंद का गाना। उम्मीद करते हैं आपको बेहद पसंद ही होगी। और सबसे पहले जुड़ने वाले हमारे सरफू भाई सरफराज पटेल जी साउथ अफ्रीका से जुड़ चुके हैं। भाई जान वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका। और आत्माराम पाटिल जी वेलकम करते हैं आपका भी। और सर्वेश भगत जी वेलकम है आपका भी। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी वेलकम करते हैं आपका भी। और विजय राज जी आपका भी वेलकम है। और आरिफ सिंध जी वेलकम करते हैं आपका भी। और सोनू गौतम जी आपका भी वेलकम वेलकम वेलकम है। साथ ही साथ अशोक देशमुख जी बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और गजानन सलोकार जी आपका भी वेलकम है। और राजू सिंह जी आपका भी बहुत बहुत वेलकम करते हैं। साथ ही साथ संदीप सुतार जी आपका भी वेलकम कहते हैं। और काजल झक्का जी आपका भी वेलकम है। ज्योति खटवटे जी बहुत दिन बाद आई हैं, बहुत बहुत आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। और खुश आमदीद। जाकिर खान जी जुड़ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और एम ताहिर जी आपका भी वेलकम है। और साथ ही साथ विभूति भूषण शरण जी आपका भी वेलकम है। जितने भी दोस्त हैं सभी का वेलकम वेलकम वेलकम। और मैं सोच में पड़ गया हूँ कि आज प्रोग्राम का आगाज मैं कहाँ से करूँ, क्योंकि आज के जितने भी गाने हैं माय गॉड सच में बहुत ही प्यारे प्यारे गाने हैं। लेकिन जो सबसे पहले मुझे जो गाना दिख रहा है वो हमारे दो दोस्तों का है। एक तो है हमारे ये गजानन जी का ग्रुप का, उनका भी है। और इसी गाने में शामिल हैं हमारे मिसाल अंगद जी भी हैं, तो इनका भी वेलकम करते हैं। और मिसाल अंगद जी के साथ साथ इस गीत में शामिल हो रहे हैं शायद मेरे जाकिर खान जी भी हैं। ये डिमांड मतलब जाकिर जी का ही यानी कि सबसे पहले आया था। जाकिर जी भी इस गाने में शामिल हैं। ओके, तो आप सभी की पसंद पे सबसे पहला गाना है, इंजॉय कीजिए एक निगाह में न जाने ले गया कोई। इंजॉय कीजिए इस ट्रैक को, आते हैं इस गाने के बाद इंजॉय करके।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे। बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं। संध्या पटेल जी जुड़ चुकी है, बहुत बहुत वेलकम है दीदी आपका। और रंजीत कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। रंजीत कुमार जी, नंदलाल जी जुड़ चुके हैं गाजीपुर से, आपका भी वेलकम करते हैं। और सुनीता गोग जी जुड़ चुकी हैं सरायकेला झारखंड से, आपका भी वेलकम करते हैं। गजानंद सिंह आदरणीय अम्मा जी को प्यार भरा नमस्कार है। गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं?
1: आरजे अमन सर जी, सुसंध्या नमस्कार, नमस्ते जी। जाकिर खान जी और भी भाई इसमें शामिल हैं, सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर,
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे अशोक देशमुख जी लेते हैं, गजानंद जी, मिसाल अंगद जी, जाकिर खान जी, सभी की पसंद, लाजवाब धन्यवाद देते हैं। और फीडबैक सुनते हैं आत्माराम जी का।
2: हेलो अमन सर जी,
0: जी
2: प्रोग्राम का आगाज बहुत अच्छे गीत से, हमारे गजानंद भाऊ का गीत, साथ में जाकिर खान जी और मिसाल अंगद जी भी है, और हम ये गाना सुन रहे हैं महाराष्ट्र के नासिक जिले में।
0: अच्छा।
2: और अभी एक घंटे के बाद में हम प्रोग्राम नहीं सुन पाएंगे सर, क्योंकि कसरा घाट में रेंज बहुत कम ज़्यादा होती है।
0: कोई बात नहीं, कोई
2: और आपको पता है सर, हम आजकल बहुत ज़्यादा घूमते हैं।
0: अच्छा, घूमते रहिए, घूमते रहिए, घूमते घूमते सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार, जो दीवाना बना दे। धन्यवाद। और सोनू गौतम जी लिखते हैं कि न जाने एक निगाह में क्या ले गया कोई, गाना सच में बहुत लाजवाब लगा है। और संध्या पटेल जी लिखते हैं कि लवली सॉन्ग है। अच्छा जी। और निशांत है वो लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाने के लिए धन्यवाद देते हैं। और अशोक पाल जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं कि सच ए स्वीट सॉन्ग, रियली टचेस द हार्ट। और रंजीत कुमार जी क्या कहते हैं, इनके सुनते हैं।

0: कोई बहुत ही शानदार आगाज के साथ रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे।
1: धन्यवाद देते हैं और सच में आज के सभी गाने बहुत ही प्यारे प्यारे होने वाले हैं। रवि मोहाड़े जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। रवि मोहाड़े जी और शिल्पा बेन जी लिखते हैं कि हम भी जुड़ गए हैं, बहुत बढ़िया गाना सुनने को मिला पहला ही। और एम ताहिर जी लिखते हैं कि अमन खान साहब आपकी वो पुरकशिश आवाज का जादू जैसे ही फिजाओं में घुला हम तमाम श्रोताओं की तन्हाई खुशगवार नगमों से महक उठी है। आपकी इस बावकार अहम आमद पे हम तहे दिल से आपका इस्तकबाल करते हैं और बेहद मुसर्रत के साथ आपका खैर मकदम करते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सर जी। और फीडबैक सुनते हैं मिसालंगा जी की।
2: नमस्कार अमन सर।
1: नमस्कार।
2: मैं मिसाल अंगद बीड महाराष्ट्र से आपके लाइव कार्यक्रम से जुड़ गया हूं और अमन सर जी कार्यक्रम शुरू होने के बाद ही आपने मेरा गाना सुनवाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अमन सर जी मैं आपका अभिनंदन ही करना चाहता हूँ क्योंकि आज इतने दोनों अच्छे गायिका आपने आज स्टार ऑफ द वीक में रखे है, तो ये जिसने भी आपको इसे सोचवा दिया है तो मैं उनका भी अभिनंदन करूँगा। और हमारे आदरणीय गजानन सालोकार जी के गाने में मुझे याद किया तो मैं गजानन सालोकार जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और आज के गाने सभी आज आइटम सॉन्ग जैसे सुनने को मिलने वाले हैं क्योंकि गायिका ही इतने अच्छे है, तो आज हम पूरा कार्यक्रम का आनंद लेंगे। धन्यवाद।
1: धन्यवाद आपका भी। और जाकिर जी लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन सर जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूं सोनू गौतम जी का। लिखते हैं कि आज मैं जो गाना सुनना चाहता हूं वो डेडिकेट अमन जी आपको, आरजे वंशिका जी को और एमडी ताहिर जी को और सुनील कुमार जी को और प्रिंस पासवान जी को और सतीश शर्मा जी को, प्रीति रायदास जी को और कुंता बेनी जी को और प्रियंका जी को, पूजा भास्कर जी को, काजल झक्का जी को और जितने भी दोस्त लाइव सुन रहे हैं सभी सभी सभी को मेरा गाना डेडिकेट है। बिल्कुल, तो भाई बम्बई सीरियल को चलवाते हैं, ले चलते हैं। गाड़ी आगे बढ़ाते हैं।

अच्छी बात है, दिल्ली आने से पहले प्यार हो गया। तो फिलहाल मेरे पास फीडबैक बहुत सारा चुका है। नीलेश सूर्य काजी लिखेंगे, अमन जी प्यार भरा नमस्कार है, गाना प्ले करने के लिए धन्यवाद है। और रवि मर्जी क्या कहते हैं।

0: जाने। बहुत ही सुपर लाजवाब सॉन्ग हमारे परम मित्र गजानन सरोकार जी का, और गाने में याद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। वेलकम है आपका भी। और ये क्या कहते हैं इनकी सुनते
2: आरजे अमन सर जी, सोनू गौतम जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर,
1: वेलकम जी आपका। और यहाँ पे संध्या जी लेते हैं, वाओ लवली एंड सुपर सॉन्ग लव ट्रेन। ओके, और यहाँ पे गजानन जी लिखते हैं कि हमारे गीत को पसंद करने वाले दोस्तों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। निशांत है बोल लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग। ओके जी, और ये फीडबैक सुनते हैं क्या कहते हैं।
3: हेलो अमन सर, मैं फिर एक बार मिसाल अंगद, और अभी जो गाना आपने सुनवाया मुंबई से ट्रेन चली, तो अमन सर जी हमारे इधर एक महीना हो गया है, बीड से पुणे तक ट्रेन शुरू हो गई है, तो जब ये गाना आपने सुनवाया तो मुझे बहुत याद आ गई ट्रेन की, इसलिए मैंने आप फीडबैक दे रहा हूँ। और आज मैंने कहा था कि आज गाने सचमुच बहुत अच्छे सुनने को मिलने वाले हैं, तो अमन सर जी सचमुच आज बहुत कार्यक्रम रंगत आने वाली है, तो आज पूरा कार्यक्रम और पूरे गाने आज हम सुनेंगे, धन्यवाद।
1: धन्यवाद देते हैं आपका भी। और यहाँ पे एम ताहिर जी लिखते हैं कि मुंबई से उठी वो रेल की वो पटरियाँ दिल्ली तक का सफर नाप रही थी, मगर दो दिलों की धड़कन की यानी किसी अनाम स्टेशन पर ही एक हो गई। अच्छा, और रेल के उस सुहाने सफर में हवाओं की सरसराहट और प्यार का नगमा बन गई, और मंजिल से पहले ये खूबसूरत ओरिष्टे की शुरुआत हो गई। सोनू गौतम जी की पसंद बेहतरीन लगी है। और अशोक पाल जी लिखते हैं कि अरे वाह, मुंबई से दिल्ली का सफर और बीच में रास्ते में मोहब्बत का इजहार, मजा आ गया। अगला जो डिमांड है इसी बात पर MD ताहिर जी लेके आए हुए हैं, और ये गाना अमन जी आपको आपकी सुंदरता की मुरजी को, हाय थैंक यू सो मच उनको डेडिकेट करने के लिए। और आरजे वंशिका जी को स्पेशली डेडिकेट है, मैजिकल गर्ल कायनात जी को, और दुलारा भाई है सोनू गौतम जी, और बड़े भाई है सुनील कुमार जी, और प्रिंस पासवान जी, और सो सुनने वाले जितने भी साथी हैं सभी को गाना डेडिकेट करना चाहते हैं, और कहते हैं कि इश्क दी गली विच नो एंट्री, मतलब ये नो एंट्री करवाना चाहते हैं। भाई कोई बात नहीं, इंजॉय कीजिए।

0: इश्क दिखा चिका। वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना देकर आ चुके हैं। मेरे पास बहुत सारे सुनते हैं।
1: अमन जी, कुछ बच्ची आ गई है और आपको कुछ सुनाना चाहती है। सुना,
2: गोकुल की राधा चली करके सिंगार रहे, जमुना के तट पे खड़े कृष्ण जान में घुंडा उठा के मिला ले तू अखिया, ये कहती है पूरी सखिया, ये पीठ है पुरानी तुरा जोड़ में रानी, तेरे मेरे जमनों के बाद राधे ओ राधे राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा को लगे आधे आधे। मेरा नाम है दीक्षा।
1: तेरा नाम?
2: नैन्सी।
1: नैन्सी, ठीक है सर, धन्यवाद।
0: वेलकम करते हैं दोनों का। और साथ साथ यहाँ पे सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं?
3: आरजे अमन सर जी, एम ताहिर जी अपने गाने में शामिल, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे सोनू गौतम जी लिखते हैं कि एम डी ताहिर जी बहुत बहुत लाजवाब, इश्क दी गली बीच कर एंट्री, न्यू एंट्री वाला गाना सुनवाने को मिला। सोनू गौतम जी लिखते हैं, सॉरी हमारे गजानंद जी लिखते हैं कि सोनू गौतम जी और एमडी ताहिर जी के पसंद बूझे बहुत ही अच्छी लगी, उनको धन्यवाद देते हैं। इसहाक हुसैन जी जुड़ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम भाई जान, बहुत बहुत वेलकम है, बहुत दिन बाद आए हैं भाई, कहाँ थे। और निशांत है, वो लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है जी, थैंक यू सो मच आपका भी। और अशोक पाल जी लिखते हैं कि धुन भी मजेदार है और बोल भी कमाल के हैं, पूरा गाना मस्ती से भरपूर है। हाँ, अभी और भी गाने सुनने वाले यानी मिलने वाले हैं जो सभी मस्ती वाले हैं। एम ताहिर जी लिखते हैं कि अमन सर जी मेरा गाना प्ले करने के लिए शुक्रिया, और साथियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ सुनीता गोप जी के, सुनना चाहती हैं, और ये गाना डेडिकेट है अमन जी आपको और आपकी सुंदरता की मुरत जी को और सभी दोस्तों को डेडिकेट करना चाहती हैं। तो बिल्कुल दिल डिंग डोले, इंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे। और जुड़ चुके हैं हमसे यहाँ पे प्रीति रायदा जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और संध्या जी देखते हैं दिल दिल डिंग डोंग डिंग डोले, ऑसम सॉन्ग लगा है मुझे। और निशांत बोले दिख रहे हैं कि मेरा फेवरेट गाना सुनाने के लिए धन्यवाद देते हैं। और जितेंद्र जी देखते हैं कि मैं भी जुड़ गया हूँ, वेलकम करते हैं आपका भी। और ये फिर
1: आरजे अमर सर जी, सुनीता गोप जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर,
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे नीतू शरण जी लिखते हैं कि गाना अच्छा चल रहा है, ओके। और गजलन जी लिखते हैं कि तेरे इश्क की दीवानगी सर पे चढ़ के बोले, मजा आ गया गाना सुन के, धन्यवाद देते हैं। और सुनीता गोप जी अमन जी धन्यवाद मेरा गाना प्ले करने के लिए। और सोनू गौतम जी लिखते हैं कि तेरे इश्क की दीवानगी सर पे चढ़ के बोले, गाना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मनीषा शर्मा जी लिखते हैं कि ओके ओके जी, तो रेडियो गाना पे मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो है किनका, ये विजयंती नागदेव जी का है। और विजयंती नागदेव जी सुनना चाहती हैं जूबी जूबी जूबी, इंजॉय कीजिए इस गाने।

बिल्कुल जुबी जुबी जुबी। और यहाँ पे सोनू गौतम जी लिखते हैं कि ये वाला जुबी जुबी वाला गाना मुझे अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं। इसी बात पर जो डिमांड है, इसके बाद जो मैं प्ले करने वाला हूँ वो रितु जी का प्ले करने वाला हूँ। और रितु जी का बहुत ही प्यारा गाना है जो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इनको सेक्सी सेक्सी लोग बोले ये कहती है भाई, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो एंजॉय कीजिए इस गाने को।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार, जो आपको दीवाना बना दे। और यहाँ पे संध्या पटेल जी लिखते हैं अमेजिंग सॉन्ग है जी, बिल्कुल थैंक यू सो मच। इसी बात पर अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो इन्हें काजल झक्का जी का, सुना चाहती हैं हलकट जवानी। अच्छा जी, एंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना वाला फीडबैक मेरे पास बहुत सारे हैं, शामिल करता हूं मैं
1: अर्जे अमासा जी का झा झा जी अपने गाने में शामिल की उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी। और यहाँ पे सोनू गौतम जी लिखते हैं कि ये हलकर जवानी वाला गाना मुझे अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं। और संजय जी लिखते हैं कि बहुत मजा आ रहा आज के नंबर वन सच में गाने सुन सुन के। अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ वो निकी खान जी का है, और निकी खान जी सुना चाहती हैं ये कमली। एंजॉय कीजिए कमली।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो आपको दीवाना बना दिया। संध्या पटेल जी लिखते हैं कि सभी सॉन्ग इस समय के एक प्ले हो रहे हैं और आमना जी लिखते हैं कि हम भी जुड़ गए हैं स्टार्टिंग से रेड बुल प्रोग्राम के लिए, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे मनीषा जी का एक मैसेज आया हुआ है कि हमारे यहाँ रेडियो हॉट स्टार नहीं चल रहा है, ये रेडियो गाना पे मैं प्रोग्राम को सुन पा रही हूँ। तो शायद हो सकता है कि बहुत से दोस्तों का इसीलिए फीडबैक आना यानी कम हुआ है कि बहुत से दोस्तों को शायद सुनाई नहीं दे रहा हो। और आप लोग मुझे मैसेज करके बताएं कि आपके तरफ अच्छा चल रहा है या नहीं। और फिलहाल अगला जो मैं डिमांड प्ले करने वाला हूँ वो है विभूति भूषण शरण जी का, वो सुनना चाहते हैं ये गाना यानी कि क्रेजी किया रे। इंजॉय कीजिए भाई विभूति भूषण जी।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे जितेंद्र जी लिखते हैं बहुत ही शानदार गीत प्ले हो रहे हैं, मजा आ रहा है बहुत। और संदर जी लिखते हैं कि क्रेजी क्या रहे, नाइस सॉन्ग। और नीतू जी लिखते हैं कि गाना इनके सुनवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जागर जी लिखते हैं कि हॉटस्टार पर भी और रेडियो गाना दोनों पर प्रोग्राम एकदम मस्त चला, थैंक यू सो मच बताने के लिए। और फीडबैक सुनते हैं क्या कहते हैं।
1: गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम सभी दोस्तों को मेरी तरफ से प्यार वाला सलाम। और अमन भैया, मैं भी जुड़ गया हूँ आपके प्रोग्राम से, बहुत ही लाजवाब आज के स्टार और बहुत ही अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनने को मिल रहे हैं। तो सभी दोस्तों का धन्यवाद करते हुए मैं सुनील कुमार बांका बिहार से
0: धन्यवाद देते हैं। और बता रहा हूँ कि जैसे ये म्यूजिक वाले गाने खत्म होंगे तो थोड़ा इन दोनों के बारे में जानकारी मैं जरूर दूंगा। विभूति जी लिखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। राधे राय जी लिखते हैं कि नमस्कार अमन सर जी, मैं भी यहाँ पे जुड़ गया हूँ तो वेलकम करते हैं आपका भी। दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं कि अमन जी सारे गाने डांस नंबर वन बजते रहेंगे जी, तो मजा आ रहा है सुन के। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो हमारे सोहिल जी का है और सोहिल जी सुनना चाहते हैं धूम मचा ले। बिल्कुल धूम मचाने आ गया ये गाना, एंजॉय कीजिए। और लिखते हैं कि डेडिकेट है अमन जी आपको, आप जबंशिका जी को और जितने भी दोस्त सुन रहे हैं सभी को। ज्योति जी लिखते हैं कि मेरा भी रेडियो हॉट स्टार बंद पड़ गया है, मैं रेडियो गाना पसंद नहीं। अच्छा

बिल्कुल धूम मचाते रहे और सुनते रहे रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे और गजानन जी लिखते हैं कि धूम मचा ले, डांसिंग गाना सुनकर तो मजा ही आ गया, धन्यवाद देते हैं। और संध्या जी लिखते हैं कि आज के सभी गाने धूम ही मचा रहे हैं, जी थैंक यू सो मच आपका भी। और शिल्पा बेन जी लिखते हैं कि हमारे यहाँ भी बीच बीच में अटक रहा है रेडियो हॉट स्टार, ओ माय गॉड मैं क्या करूँ यार, आज ही अटकना था। जितेंद्र जी लिखते हैं झक्का फरमाइश। अगला जो डिमांड है दो दोस्तों की, हमारे ईश्वरलाल मेहर जी की और जितेंद्र जी की है, वो सुनना चाहते हैं इश्क समंदर। तो दोनों दोस्तों की डिमांड में प्ले करता हूँ, एंजॉय कीजिए इश्क समंदर।

0: बिल्कुल। और यहाँ पे शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि धूम मचा ले, सॉन्ग तो धूम ही मचा दी, सुपर सॉन्ग के लिए धन्यवाद देते हैं। और सुनील कुमार जी लिखते हैं कि धूम मचा ले आपके हॉट हिसाब पर, बिल्कुल आज यानी कि सही आवाज आ रही है, धूम मचाया जा रहा है, बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है, यानी कहीं कहीं दिक्कत हो रही है ना। मनीषा जी लिखते हैं कि रेडियो गाना पर बिल्कुल अच्छा से चल रहा है, ओके थैंक यू सो मच। वहीं से सुनिए आप इम्तियाज जी लिखते हैं कि जी जब मेरा गाना प्ले हो रहा था तो यहीं यहाँ भी अटक अटक ही चल रहा था, ओह माय गॉड। कोई बात नहीं, आप इन पॉडकास्ट में फिर से सुनिएगा, वहाँ पे अच्छा सुनाई देगा आपको ये फीडबैक।
1: अरजय मनसा जी, ईश्वरलाल मेहर जी और जितेंद्र जी दोनों भाई मिलीजुली फरमाइश में शामिल किए हैं, दोनों भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर,
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे संजय पटेल जी देंगे, आज तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस सॉन्ग की कितनी तारीफ करूँ, सभी सॉन्ग तो धमाकेदार हैं। और जितेंद्र जी लेते हैं बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी गाना प्ले करने के लिए, दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ गुड्डू सीतामढ़ी से, ये सुना चाहते हैं डांस पे चांस, ओके एंजॉय कीजिए इस गाने को भाई गुड्डू जी।

वेलकम रेडियो जो दीवाना बना दिया और संध्या पटेल लिखते हैं कि अमेजिंग सॉन्ग है और जितेंद्र जी लिखते हैं कि नाइस सॉन्ग चलने के लिए धन्यवाद देते हैं और दीपक कुमार जी लिखते हैं अमन जी मुझे लगता है कि रेडियो हॉटस्टार हिट होने का यह बात चीन तक पहुंच गई है और चीन ने कुछ कर दिया इसलिए रेडियो हॉटस्टार अटक अटक चल रहा है लेकिन मेरा बढ़िया चल रहा है क्या गजानंद जी लिखते हैं कि कोई डांस पे चांस मार दे शानदार गाना सुनने को मिला मजा आ गया सुन के और शिल्पा बेन लिखते हैं कि डांस पे चांस मान ले एक्सीलेंट सुपर सॉन्ग है और हमारे इशाक हुसैन जी लिखते हैं कि बहुत ही बढ़िया और कॉम्बिनेशन से आप गाने बजा रहे हैं बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है थैंक यू सो मच भाईजान। इसी बात पर अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ दो दोस्तों की डिमांड है यानी कि कायनात जी और संध्या पटेल जी दोनों सुनना चाहती है बीड़ी जलाई ले भाई कोई बीड़ी जला के दे दो इनको बीड़ी पीना है ओके कोई बात नहीं है तो सुनवाते हैं बीड़ी जलाई ले एंजॉय कीजिए।

0: वेलकम है कॉमेडी हॉट स्टार जो दीवाना बना दे और फिर बैक सुनते हैं सर्विस भगत जी का।
1: अरजय अमन सर जी, कैनाथ जी और संध्या पटेल जी दोनों बॉन्ड मिली जुली फरमाइश में शामिल किए, दोनों बॉन्ड को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं।
0: थैंक यू सो मच, वेलकम करते हैं आपका भी और गजन अंजलि देंगे। कैनाथ जी और संध्या पटेल जी दोनों की पसंद बीड़ी जलाई ले, जिगर से पिया जिगर माँ बड़ी आग है, गाना भी बहुत ही फंटास्टिक है। संध्या जी लिखेंगे थैंक यू सो मच और कुछ कह भी रही है।
2: थैंक यू सो मच भैया आज मेरा गाना प्ले करने के लिए। आज सभी दोस्तों के सॉन्ग ना एक से बढ़ के एक चल रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है आज तो।
0: जी, अभी और मजा आने वाला है, सुनते रहिए बस। और एम ताहिर जी लेते हैं कि ये कायनात जी के इंतखाब का क्या कहना, इस नगमे के लय और रवानगी यकीनन हर रमाद को मुतार और रक्ष करने पर मजबूर कर देती है। इस गीत का सुरूर और साज का बहाव हर सुर हर सुनने वाले के दिल जीत लेता है। धन्यवाद देते हैं। और अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ आमना खान जी का दिल रुबा दिल नशी, वैसा कुछ गाना है, सुनना चाहती है तो सुनवा दिया, इंजॉय कीजिए आमना जी।

0: वेलकम है कॉमेडी हॉटस्टार जो दीवाना बना दे हम तहलकी लेते हैं कि अमन जी आज हमारे यहाँ सफेद मोती से बीते ओलों की बौछार और मूसलधार बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल दिया है। मानो कुदरत अब हर तरफ ठंडक की आगोश में समेट रही हो। अच्छा और शिल्पा बहन जी लिखेंगे दिल रुबा वाला गाना मुझे लाजवाब लगा है। धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। सुनते हैं फीडबैक इनका।
1: आरजे अमन सर जी अमना खान जी अपने गाने में शामिल किए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको भी धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और अमना खान जी क्या कहते हैं इनकी भी सुनते हैं।
2: दिल रुबा दिल नशी माहरी महजबी हम नमा हम नशी हम तेरे हमको यकीन।
0: ओके जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और अगला जो डिमांड है वो नमीरा खान जी का है। सुनना चाहती हैं प्यार प्यार प्यार। इंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: बिल्कुल। फिलहाल अब थोड़ा सुनते हैं अलीशा चिनाया जी और सुनिधि चौहान के बारे में थोड़ी सी ये जानकारी। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी।
1: आज की हमारी दो दिग्गज गायिकाएं हैं अलीशा चिनॉय जी और सुनिधि चौहान जी। दोनों ने भारतीय संगीत जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। दोनों की आवाज का अंदाज अलग है, लेकिन दोनों ने अपने गीतों से लाखों करोड़ों श्रोताओं के दिलों में खास जगह बनाई है। अलीशा चिनॉय जी की बात करें तो उनका जन्म 18 मार्च 1965 को गुजरात के अहमदाबाद शहर में हुआ था। उनका मूल नाम सुजाता चिनॉय बताया जाता है। उन्होंने वर्ष 1985 के आसपास अपने संगीत करियर की शुरुआत की। शुरुआती दिनों में उन्होंने संगीतकार बप्पी लहड़ी के साथ भी काम किया और धीरे धीरे हिंदी फिल्म संगीत तथा पॉप संगीत में अपनी पहचान बनाई। अलीशा जी को खास तौर पर इंडी पॉप की प्रमुख गायिकाओं में गिना जाता है और उन्हें क्वीन ऑफ

0: से हुई थी जो उनके मैनेजर भी थे। बाद में दोनों अलग हो गए। उनके बच्चों के बारे में विश्वसनीय सार्वजनिक जानकारी स्पष्ट नहीं है।
1: अलीशा जी ने अपने संगीत के सफर में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उनकी आवाज और मेड इन इंडिया जैसे गीतों ने उन्हें भारतीय पॉप संगीत के इतिहास में एक खास स्थान दिलाया। अब बात करते हैं हमारी दूसरी दिग्गज गायिका सुनिधि चौहान जी की। सुनिधि चौहान जी का जन्म 14 अगस्त 1983 को भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ था। उनका जन्म का नाम निधि चौहान था। उनके पिता दुष्यंत कुमार चौहान थिएटर से जुड़े हुए थे। सुनिधि जी को बचपन से ही गाने का बहुत शौक था। उन्होंने मात्र 4 वर्ष की उम्र से ही स्थानीय कार्यक्रमों और संगीत प्रतियोगिताओं में गाना शुरू कर दिया था। उनके परिवार ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें संगीत की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। सुनिधि चौहान जी ने बहुत छोटी उम्र में अपनी प्रतिभा से लोगों का ध्यान आकर्षित किया। वर्ष 1996 में उन्होंने गायन प्रतियोगिता मेरी आवाज सुनो जीती और उसी वर्ष फिल्म शस्त्र से पार्श्व गायन की दुनिया में कदम रखा। लेकिन उन्हें बड़ी पहचान वर्ष 1999 में फिल्म मस्त के गीत रुकी रुकी सी जिंदगी से मिली। इस गीत ने उनके करियर को एक नई दिशा दी और वो हिंदी फिल्म संगीत की लोकप्रिय गायिकाओं में शामिल हो गईं। इसके बाद सुनिधि चौहान जी ने एक से बढ़कर एक हिट गीत गाए। महबूब मेरे, धूम मचाले, बीड़ी जलाई ले, देसी गर्ल, शीला की जवानी, कमबख्त इश्क, डांस पे चांस, भागे रे मन, इश्क सूफियाना और कमली जैसे गीतों ने उनकी लोकप्रियता को और बढ़ाया। उनकी आवाज की खासियत है कि वो तेज रफ्तार डांस नंबर से लेकर रोमांटिक और भावपूर्ण गीतों तक हर तरह के गाने को अपने अलग अंदाज में गा सकती हैं। उन्होंने अपने करियर में कई प्रतिष्ठित पुरस्कार भी हासिल किए हैं और लाइव परफॉर्मेंसेस के लिए भी जानी जाती हैं। सुनिधि चौहान जी के निजी जीवन की बात करें तो उनकी पहली शादी वर्ष 2002 में निर्देशक और कोरियोग्राफर बॉबी खान से हुई थी, लेकिन बाद में दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद 27 अप्रैल 2012 को उन्होंने संगीतकार हितेश सोनिक से शादी की। इस दंपति का एक बेटा है जिसका नाम तेग सोनिक है। उसका जन्म 1 जनवरी 2018 को हुआ था। दोस्तों, अलीशा चिनॉय जी और सुनिधि चौहान जी की संगीत यात्राएं हमें बताती हैं कि हर कलाकार की अपनी एक अलग पहचान होती है। अलीशा जी ने मेड इन इंडिया जैसे पॉप गीतों से संगीत प्रेमियों के दिलों में जगह बनाई। वहीं सुनिधि जी ने अपनी दमदार आवाज, शानदार गायकी और ऊर्जा से हिंदी फिल्म संगीत को कई यादगार गीत दिए।
2: दो अलग पीढ़ियां, दो अलग अंदाज और संगीत के अनगिनत रंग, यही है हमारी आज की दोनों दिग्गज गायिकाओं की खूबसूरत पहचान।
3: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार ऑफ द वीक शो आरजी अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार अंतरा मस्ती में सुनिए दिए गए अंतरे पर आधारित गाने। लाइव शो में पार्टिसिपेट कीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर से, जो है 91-35-84-12-32, यानी 9135841232। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।
4: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो दीवाना बनाते हैं और प्रोग्राम का आगाज फिर आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले चलते हैं शाहिद अंसारी जी के पास, वो सुनना चाहते हैं ये बहुत ही प्यारा नगमा अलीशा चिनॉय की आवाज में। सभी दोस्तों को डेडिकेट करना चाहते हैं, सुनवा दिए, एंजॉय कीजिए।

0: तू मत मायके मत जाइयो।
1: तेरी आंखों में प्यार की लहर भी है पर तू एक मीठा जहर।
2: वेलकम एक कॉमेडी ऑडिट जो दीवाना वाले एम तहजी देंगे आमना खान जी का दिल रुबा दिल नशी ये इंतखाब वाकई बेहद नफीस है और इस रू यानी परवर और असर अंगेज नगमे ने पूरे शो में एक दिलकश वो समा बांध दिया है। धन्यवाद देते हैं उनको। और शिल्पा बेन जी लिखते कि मैं तो सुनिधि चौहान से इतनी प्रभावित हो गई कि मैंने अपनी भतीजी का नाम ही सुनिधि रखा है। ओ माय गॉड ऐसा है क्या। और ओके और यहाँ पे अशोक देशमुख जी लिखते हैं दोनों गायिकाओं के बारे में जानकारी अच्छी मिली, थैंक यू सो मच इसके लिए भी। और ये फीडबैक चलता है
3: आरजे अमन सर जी शाहिद अंसारी जी अपने गाने में शामिल किए हो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
2: वेलकम जी अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ वो रंजीत कुमार जी का। रंजीत जी सुनना चाहते हैं दिल ये कहता है बाहों में तेरी वगैरह वगैरह है ना आई लव यू वाला गाना सुनना चाहते हैं ये तो मैं बिल्कुल बिल्कुल प्ले करने वाला हूँ दिल ये कहता है आई लव यू फुल और काटेगा एंजॉय कीजिए।

0: करती है।
1: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो आपको दीवाना बना दे। और आमना खान लिखते हैं कि एमडी ताहिर साहब, आपके फीडबैक के अल्फाज की मशकूर हूं मैं, एंड सभी का फीडबैक के लिए थैंक यू सो मच। साथ ही साथ यहाँ पे शाहिद जी लेते हैं, थैंक यू सो मच अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। दोस्तों का भी शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। और ये फीडबैक,
2: अमन भैया नमस्कार प्रणाम नमस्कार। और मैं भी इसी गाने में शामिल था, दिल ये कहता है, और आपने मेरी पसंद का गाना चलाया, आपका तहे दिल से शुक्रिया। और सभी दोस्तों का फीडबैक देने के लिए धन्यवाद।
1: अच्छा हाँ, आप कभी इसी गाने में के लिए आए हुए डिमांड हो, ओके आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने आपके मैसेज नहीं पढ़ा है, लेकिन थैंक यू सो मच, आपने मुझे याद दिला दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और रंजीत कुमार लिखते हैं कि सर जी गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बात पर जो डिमांड है वो हमारे हुकुम चंद जांगिड़ जी का सुनना है, ये भी सुनना चाहते हैं, ये अब खुद ही सुन लीजिए ना, तब मजा आने वाला है। इसमें भी आई लव यू है ना, इसलिए।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे, फिर गए सुनते हैं सर्वेश भगत जी का।
1: अर्जी मास्टर जी हुकुम चंद जांग अर्जी अपने गाने में शामिल किए हैं, वो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे मनीषा शर्मा लिखते हैं कि बेहतरीन सॉन्ग है। अगला जो डिमांड है वो दो दोस्तों की है, एक प्रियंका जी का है और प्रियंका जी के साथ साथ कोई एक और भी है, जरा सा मैं नाम बता रहा हूँ आपको, नीतू शरण जी, दोनों सुनना चाहती हैं। काटे नहीं करते दिन ये रात, एंजॉय कीजिए इस गाने को।

और अभी तक वो गाने की डिमांड तो नहीं आई है। रुक रुक रुक वाला भाई, मुझे आज मन कर रहा था सुनने का। फिलहाल यहाँ नीतू जी लिखते हैं कि मेरे पसंद गाना सुनाने के लिए धन्यवाद देते हैं आपको, और विभूति भूषण जी लिखते हैं कि बहुत अच्छा गाना चल रहा है। अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ वो शाजिया खान जी का है, वो सुनना चाहती हैं, ओ माय डार्लिंग आई लव यू। वाह क्या बात है।

0: ओमेक डार्लिंग आई लव यू आई लव यू आई लव यू बहुत ही प्यारा गाना है और आई लव यू सुंदरता की मृति में तो ये भी कहने वाला हूँ। फिलहाल ये फीडबैक सुनता हूँ।
1: काटे नहीं कट

0: इतना प्यारा सॉन्ग सुनाने के लिए, जो कि मिस्टर इंडिया का था और श्रीदेवी का सॉन्ग था, और इस सॉन्ग को अलीशा चौनाई जी ने गाया था। शुक्रिया इतना सॉन्ग, इतना प्यारा सॉन्ग सुनाने के लिए।
1: ओके जी, और आमना खान जी लेते कि ये मेड इन इंडिया अर्जमन जी, वेरी नाइस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच आपका भी। और रूपचंद जी लिखते हैं कि मस्त गाना चल रहा है। अगला जो डिमांड है हमारे नंदलाल जी का है, वो सुनना चाहते हैं ये लवर गर्ल। एंजॉय कीजिए भाई नंदलाल जी अपनी डिमांड।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो आपको दीवाना बना दे। राजीव तिवारी जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। राजीव जी और मनीषा जी लिखते हैं वेरी वेरी वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है। ओके जी, अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो है वो गीता जी का, और गीता जी सुनना चाहती है रुकी रुकी सी। तो इंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: डिजर्व कर, मैं कौन रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे। और यहाँ पे शिल्पा बहन जी देखते हैं कि मस्त मस्त मस्त गाने चल रहे हैं आजकल सभी। और दीपक कुमार जी क्या कहते हैं?
1: अमन जी आपने आज तो बहुत ही बढ़िया कंपटीशन चला रखा है भैया, गाने इतने बढ़िया लग रहे हैं। कभी मैं सोचता हूँ एलिसा जी का गाना नंबर वन लग रहा है, कभी सुनीति चौहान का, क्या मजेदार कंपटीशन चल रहा है। बिल्कुल एक नंबर कंपटीशन, एलिसा चिन्ना जी तो हमारी कोहिनूर का हीरा है और हमारी सुनीति चौहान जी तो हमारी देसी गर्ल, इंडिया की देसी गर्ल है। बिल्कुल दोनों नंबर वन है, दोनों नंबर वन गाने चल रहे हैं, बढ़िया मजा आ रहा है, शानदार मजा आ गया। दीपक गायकवाड़ सीनीवाला मध्य प्रदेश से।
0: धन्यवाद देते हैं आपको भी। और राजीव आज तो ये गाना नहीं प्ले होने वाला है भाई, सॉरी। और ये प्रीति लहदा जी लिखते हैं कि दिल से बहुत बहुत शुक्रिया गाना प्ले करने के लिए। अनिल मेहता जी लिखते हैं कि बहुत लाजवाब गाने चल रहे हैं, मजा आ रहा है सुन के। और आमना खान लिखते हैं कि शानदार, लाजवाब, बेमिसाल ऑन एयर प्रोग्राम हो रहा है और मजा आ गया सुन के। फिलहाल अगला जो डिमांड है वो इनाया खान जी का है और सुनना चाहती है ऐसा जादू डाला रहे। हाँ बिल्कुल, डालते रहे जादू, सुनते रहिए।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार। जो दीवाना बना दे राजीव जी लेते हैं कि ये इनाया खान जी के पसंद मुझे बहुत ही पसंद आया, ऐसा जादू डाला है। और अनिल मेहता जी लेते वाह बहुत ही बढ़िया गाना सुनने को मिल रहा है, मजा आ रहा है सुन सुन के। और अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ वो है हमारे अशोक पाल जी का। अशोक पाल जी सुनना चाहते हैं इन कजरा रे, इंजॉय कीजिए।

Ana.

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बनाते मजा आ गया सुन के। और इसी बात लिखते हैं कि जादू वाला भी गाना मुझे अच्छा लगा है। और राजीव तिवारी जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना। ओके, अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ मुझे भी तो भाई बहुत मजा आ रहा है सुन सुन के। वो है हमारे सर्वेश भगत जी, आत्माराम पाटिल जी और अशोक देशमुख जी का डिमांड, इसको सुनते हैं।
1: नमस्कार अमन सर।
0: नमस्कार।
1: मैं निम्बोरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख।
0: वेलकम जी।
1: आज है स्टार ऑफ द वीक, तो अलीशा चुनाई का गाया एक गाना सुनना है। फिल्म का नाम है क्रिश 3 और गाने का बोल है, दिल तू ही बता कहाँ था छुपा। ये गीत सबसे पहले आपको और आपकी सुंदरता की मूर्त को और जितने भी हॉट स्टार सुनने वाले श्रोता है उन सबको ये गीत सुनवा दीजिए सर, धन्यवाद।
2: आरजे अमन सर जी सुसंध्या नमस्कार। नमस्ते जी, आज हमारा फरमाइश का फिल्म है क्रिश 3 और गाने का वाला दिल तू ही बता। और स्टार जो सबको दीवाना बनाते हैं, सभी बड़े को प्रणाम, सभी छोटे को आशीर्वाद। हम सर्वेश भगत हजराजंदा जिला वैशाली बिहार से बोलना है। हमारा परिवार सतीश भगत, हेमंत भगत, वर्ष किशोर भगत, आनंद शेखर, आनंद प्रकाश, सोनी कुमारी, मोनी कुमारी, सूरज कुमार, मनोज जायसवाल, अशोक देशमुख जी, आत्माराम पाटिल जी, सैयद यूनुस जी, संतोष कुमार जी, मुन्ना जी, आरजे अमन सर जी, सुंदरता की मूर्त जी, आरजे वंशिका जी, आरजे आकांक्षा जी, आरजे एम एस परमार जी, आरजे आदित्य जी, आरजे सोने जी, आरजे रत्ना जी और सभी आरजे और सभी भाई और सभी बहन और सभी लिसनर इस गाने में शामिल है, सभी को सुना दीजिएगा। जयराम जी के
0: एंजॉय कीजिए आप सभी दोस्त।

0: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार ऑफ द वीक शो आरजी अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार अंतरा मस्ती में सुनिए दिए गए अंतरे पर आधारित गाने। लाइव शो में पार्टिसिपेट कीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर से, जो है 91-35-84-1232 यानी 9135841232। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।
1: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे। और मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं। अशोक देशमुख जी, धन्यवाद अमन सर जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। और राजीव जी लिखते हैं कि दिल तो ही बता, गाना सच में बहुत ही प्यार लगा है। और ये सुनते हैं क्या कहते हैं।
2: सर्वेश भगत जी की पसंद लाजवाब लगी, उनको धन्यवाद। रूपचंद गोयल, बाड़मेर, राजस्थान।
1: ओके जी, और यहाँ पे ओके ठीक है। और यहाँ पे ये फीडबैक सुनते हैं।
3: हरजय अमन सर जी, धन्यवाद, लख लख धन्यवाद। हम तीन भाई का फरमाइश, हमारा अशोक देशमुख जी और आत्माराम पाटिल जी का फरमाइश अपने प्रोग्राम में जगह दे दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।
1: ओके जी, वेलकम करते हैं आपका भी। और यहाँ पे शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि बहुत बहुत लाजवाब गाना है। ओके, थैंक यू सो मच। इसे बात बता, जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो है ज्योति खटवाड़े जी का। ज्योति खटवाड़े जी, एंजॉय कीजिए अपने गाने को। और

वेलकम बैक। और ज्योति जी आज आप बनती हैं आज के इस सॉन्ग विनर, बहुत बहुत आपको बधाई हो। और ज्योति जी लिखते सॉरी यहाँ पे राजीव जी लिखते हैं ज्योति जी गाना मुझे सुपर हिट लगा है। गजानंद जी लिखते हैं कि ज्योति खरोज जी के पसंद बेहतरीन लगी, लाजवाब लगी, उनको धन्यवाद देते हैं। और अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना अनिल मेहता जी लेते हैं सुपर गाने की डिमांड है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। और ज्योति जी लेते हैं अमन जी थैंक यू सो मच मेरा गाना सुनवाने के लिए। और दोस्तों का भी धन्यवाद गजानंद जी लेते हैं संदीप सुधार जी ज्योति खड़ोई जी आप दोनों के पसंद बहुत ही शानदार लगी है। और अजीत जी लेते हैं ये भी गाना बहुत ही प्यारा। अगला जो डिमांड है वो शिल्पा बेन जी का, वो सुनना चाहती हैं, बहुत ही प्यारा डिमांड, मतलब मुझे तो ये गाना अच्छा लगता है, तो इंजॉय कीजिए शिल्पा बेन जी।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा।

वेलकम है रेडियो हॉट हिट राजू दीवाना बना दे और राजू तिवारी लेते हैं। ये शिल्पा बेन जी की डिमांड बहुत ही प्यारा हो मेरे हाथ में, शिल्पा बेन लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। और इसी बात पर अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ वो राहुल पासी जी का है, और सुनवाते हैं, इंजॉय कीजिएगा इसको।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना वाला राजीव जी लिखते हैं कि राहुल जी के पसंद मुझे ऐसी लगी है धन्यवाद देते हैं उनको और राहुल पासी जी लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी मेरा गाना प्ले करने का अगला जो डिमांड है वो मैं प्ले करने वाला हूँ अनामिका जी का अनामिका जी इंजॉय कीजिए रुक रुक रुक अरबा रुक, रुक, रुक।

वेलकम बैक रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दिया। और राजीव जी लिखते हैं कि रुक रुक बाबा गाना अच्छा लगा मुझे, और राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये भी गाना बहुत ही प्यारा है, और गजानंद जी लिखते हैं कि रुक रुक रुक शानदार पसंद के लिए धन्यवाद देते हैं। अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो यानी कि वो है उर्वशी जी का, और उर्वशी जी सुनना चाहते हैं महबूबा महबूबा। इंजॉय कीजिए इसके।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे। और अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ मतलब क्या ही बताऊँ, रूपचंद जी का प्ले करता हूँ।
1: हेलो अमन सर जी, गुड इवनिंग, मैं रूपचंद गोयल, जिला बाड़मेर, राजस्थान।
0: वेलकम जी।
1: सर जी, आज स्टार चॉइस में मुझे भी एक आलिशा चिनॉय का एक गीत सुनना है। पिक्चर का नाम है त्रिदेव, गीत के बोल है, रात भर जाम से जाम टकराएगा। ये गीत सुनना है और ये आपको डेडिकेट रहेगा फिर आरजे वंशिका जी, आरजे परमार जी और रेडियो बहुत स्टार के प्यारे प्यारे जो भी लिसनर

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बनाते हैं और ये फिर सुनते हैं।
1: फॉर माय मजाजी खुदा तू सिर्फ मेरा महबूब, मैं तेरी महबूबा, तुझे चाहेगी बड़ा खूब तेरी महबूबा, महबूबा महबूबा महबूबा, महबूबा महबूबा महबूबा, मेरी मजाजी खुदा दी।
0: ओके थैंक यू सो मच आपका। और राजू जी लिखते हैं कि ये वाला गाना भी मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं। और ये सुनते हैं क्या कहते हैं।
2: रात भर जाम से जाम टकराएगा अमन सर जी, आपने मेरी पसंद का गाना सुनाया, आपको दिल से धन्यवाद। रूपचंद गोयल, बाड़मेर, राजस्थान।
0: ओके जगला जो डिमांड है वो खुशबू कुमारी जी का, और सुनना चाहती हैं जाने मन तू खूब है, जाने दुश्मन का। जी बिल्कुल वो तो है, एंजॉय कीजिए इस गाने को। हाँ।

वेलकम एक रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे और खुशबू जी लिखते हैं थैंक यू सो मच गाना प्ले करने के लिए और शिल्पा मैंने लिखते हैं जाने मन तो खूब है गाना भी बहुत खूब है बहुत प्यारा है और राजीव सुबह लिखते हैं कि ये खुशबू जी आपका सॉन्ग भी बहुत खूब है थैंक यू सो मच। इसी बात पर अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ और वो यानी कि कपूर चंद जी का है और कपूर चंद जी इंजॉय कीजिए अपने गाने को

वेलकम है रेडियो हॉट स्टार जो आपको दीवाना बना दे। और राजीव जी लेते हैं, भाई कपूर जी आपकी पसंद बहुत ही पसंद आई, धन्यवाद देते हैं। शिल्पा बेन जी लेते हैं, आया रे ये दिल तुझ पे आया है, बहुत ही प्यारा गाना। और यहाँ पे लिखती हैं आमना खान जी के आज का प्रोग्राम आए तो मेरी दिन और नया और रात दोनों ही बन गई है, दिल खुश करने वाला, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो है मनीषा शर्मा जी का, ओ ये सुनना चाहती हैं, आ भी जा, एंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: वेलकम बैक। और यहाँ पे शिल्पा बेंजी लिखते हैं कि आप ही जाए, ये भी गाना सुपर एक्सीलेंट, बहुत ही प्यारा गाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मनीषा जी को। राजीव जी लिखते हैं कि मनीषा जी आपका गाना सुपर डुपर हिट लगा है। और खुशबू जी लिखते हैं कि वाह मनीषा जी, आपने तो मेरा फेवरेट गाना सुनवा दिया, आपको बहुत बहुत दिल के गहरे से थैंक यू सो मच। जागृत जी लिखते हैं कि आप ही जाओ वाला गाना भी मुझे बहुत ही नाइस वाइस लगा, थैंक यू सो मच। और ये फीडबैक
1: आ भी जा। अमन जी आपने ऐसे टाइम गाना बजाया, ऐसा लग रहा है कि रेगिस्तान में जैसे किसी प्यासे को पानी मिल गया हो और पेड़ की ठंडी छांव मिल गई हो। बहुत ही बढ़िया लगाया गाना और कितना आपका बढ़िया टाइमिंग है। धन्यवाद, मैं दीपक गायकवाड़ सीनी मालवा मध्य प्रदेश से।
0: अगला जो डिमांड है वो हमारे करीब, वो है डिमांड राजेश कुमार जी का। और राजेश कुमार जी के साथ साथ हैं रवि मोहाड़े जी हैं और अनिल मेहता जी हैं। और हाँ, इन सभी की एक ही पसंद है और वो पसंद है मेड इन इंडिया। इंजॉय कीजिए।

0: और मेरा दिल है मेड इन इंडिया। वैसे क्योंकि मैं हूँ रोबोटिक इंसान ना, वैसे राजीव तिवारी जी लिखते हैं कि ये त्रिदेव का गाना भी अच्छा लगा मुझे, धन्यवाद देते हैं। और शिल्पा पंची लिखते हैं कि अलीशा चिनाया का सबसे फेमस सॉन्ग मेड इन इंडिया बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं। और सुनवाते हैं इस गाने को।
1: नमस्कार अमन जी, मैं दीपक गायकवाड़ सीनी मालवा से। सुनिधि चौहान की शानदार और दमदार आवाज का एक दमदार और शानदार सॉन्ग मैंने भी लिया है, और गाने के बोल हैं, बणथान करती जे की ए जाती रे, बणथान करती देखो ए जाती रे। फिल्म का नाम है कुरुक्षेत्र, ये बजा दीजिए। धन्यवाद, मैं दीपक गायकवाड़ सीनी मालवा मध्य प्रदेश से।
0: ओके, एंजॉय कीजिए।

0: वेलकम है कॉमेडी हॉट स्टार जो दीवाना बना दे और खुशबू जी देते हैं। ये गाना भी बहुत प्यारा लग रहा है। दीपक जी देते हैं, अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। और राजीव जी लिखते हैं कि दीपक कुमार गायकवाड़ जी की भी पसंद बहुत अच्छी लगी है और ये फीडबैक सुन लेते हैं क्या कहते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद अमन सर जी हमारा गाना प्ले करने के लिए, तहे दिल से शुक्रिया। और सभी दोस्तों का भी तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गाने को पसंद करने के लिए, फीडबैक देने के लिए। मैं रवि मोहाड़े, बेहतर मध्य प्रदेश।
0: ओके जी, अगला जो डिमांड में प्ले कर रहा हूँ वो यानी रश्मि जी का है। एंजॉय कीजिए इनके गाने को और इसके बाद से मैं आप सबसे लूंगा इजाजत, लेकिन अभी एक दो मेरी पसंद के बाद।

अच्छा एक डिमांड तो मैं भूल ही रहा था, चलिए इसको भी मैं प्ले कहता हूँ। और ये डिमांड है, पहले सुनिए फिर नाम बताते हैं। ये डिमांड है ये बिंदिया जी की, इंडिया की जो

अगला जो डिमांड है, मतलब जो मेरी पसंद है, इसके बाद से मैं आप सबसे ले रहा हूँ इजाजत। इसी गाने के साथ मुझे दीजिए प्रोग्राम के निकलने की हिदायत। मिलते हैं फिर अगले, मतलब पता नहीं कब मिलूंगा, लेकिन फिलहाल मिलता हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक ले शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब खैर, बाय बाय। और हो सकता है कि मैं कुछ दिन यानी कि ना भी आऊँ, लेकिन मतलब आने की कोशिश करूँगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कहीं हो सकता है कि मैं कल ना भी आ सकता हूँ, इसलिए अभी हो सकता है

0: अरे तुम लोग हंस क्यों रहे हो?
1: हंस नहीं रहे दोस्त, रो रहे हैं तुम्हारी अकल पे और हम सबकी बेखूफी पर। एक दीवाने ने ख्वाब देखा जंगल में और उसकी तस्दीक के लिए हम सब दीवाने तुम्हारे दरबार में पहुंच गए।
0: ये दीवानगी नहीं, हकीकत है। मैंने अपनी आंखों से उन दो इंसानों को सांप बनते हुए देखा है। विजय, पहले तो तुम्हारी सिर्फ दिमाग पे शक था, अब मालूम होता है कि तुम्हारी आंखें भी जा रही हैं।
2: हम ये कैसे मान सकते हैं यार कि एक सांप जब चाहे इंसान का रूप धारण कर ले और जब जी में आए फिर से सांप बन जाए।
3: मैं तो कहता हूँ ये तुम्हारे दिमाग का फतूर है और कुछ नहीं।
1: मुझे तो सोचकर भी हंसी आती है यार।
4: चंद साल पहले तुम्हारे
5: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.
0: ऐसे लोग चांद पर जाने वालों पर ऐसे ही ऐसा करते थे।
6: ओ फिलोसोफर साहब, आप अपनी फिलोसफी से सच को झूठ में नहीं बदल सकते।
0: अरे भाई, ये इच्छाधारी सांप सदियों से है और जो बात सदियों से सच है वो आज भी सच है, समझे?

0: गोली किसने चलाई?
1: मैंने।
0: क्यों?
1: अगर मैं गोली नहीं चलाता तो नाग उस लड़की को डस लेता।
0: वो लड़की नहीं है बेवकूफ, वो नागिन है, और जिस नाग पर तुमने गोली चलाई है उसे मैं इंसान के रूप में देख चुका हूँ, उससे बातें कर चुका हूँ।
2: लेकिन अब क्या करूँ, पिस्तौल से निकली हुई गोली वापस तो नहीं आ सकती?
0: जिस तरह पिस्तौल की गोली वापस नहीं आ सकती, इसी तरह नागिन का बदला कभी टल नहीं सकता। कहते हैं मरने वाले नाग की आंख में मारने वाले की तस्वीर रह जाती है, और नागिन उस वक्त तक चैन से नहीं बैठती जब तक वो खून का बदला न चुका ले।
3: तो अब क्या किया जाए?
0: किरण के बचने की सिर्फ एक ही सूरत है, हमें फौरन उस नाग को ढूंढ के जमीन में दबा देना चाहिए ताकि वो नागिन अपने नाग की आंख में इसकी तस्वीर न देख सके।
3: लेट्स सर्च।
0: हाँ चलो।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: ख्यालों में जय हंगामा, कहां भाग रही तू मैं?
1: या अल्लाह,
0: काले से डर गए क्या?
2: हमें काले

जग धारी जाने जाने

पीछे नहीं हटूंगा, वही मिला को हटा लूंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: होगा। ये फादर का बच्चा कौन है?
1: फादर का बच्चा नहीं सन, फादर को बाप बोलते हैं, और तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने खड़ा है।

भाई घोड़ा। सुना क्या लड़की बोला, बात में बहुत दम है, छाती ठोक ठोक के बोला।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 4 a.m. in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

हनुमान जी महाराज चुपचाप खड़े थे, पूछ रहे थे कौन समुद्र के पार जाए। जामवंत ने कहा पवन समाना का चुप साधिरा बलवाना, उठ खड़ा हो। हनुमान जी एकदम भूधराकार शरीर, बोले क्या करूं, समुद्र को पी जाऊं या लंका उखाड़ करके आ रख दूं।

0: ड्रैगन है जिसको रतनिक भी है।
1: मैं वायु देवता का औरस पुत्र हनुमान है। मैं तीनों लोगों के स्वामी अमित तेजस्वी रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री राम का दूत हूँ, जिनकी भार्या सीता माता को तुम छल से हर लाए हो।
2: बस बहुत हो चुकी है अनर्गल बातें, इसकी पूछ चला दी जाए।
1: महाराज रावण यम दिन चेतावनी है, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहो। मैं स्वयं भी तुम्हें मृत्यु दंड देने की शक्ति रखता हूँ, परंतु मुझे श्री राम की आज्ञा

0: ही तू नाम कहेगा।
1: महाराज रावण, श्री राम के साथ द्रोह करने वाले को स्वयं शंकर विष्णु ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। मैं आपको अंतिम चेतावनी देता हूँ, श्री एक पाप आपकी समस्त शक्तियों और सोने के महलों समेत इस लंका का नाश कर देगा। इस हंसते गाते देश में एक चित्कार के सिवा कुछ नहीं बचेगा। मृत आत्माओं को पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं बचेगा। जय श्री राम।